0: Advisor, holy the railroad, holy the locomotive, holy the visions, holy the hallucinations, holy the miracles, holy the eyeball, holy the abyss, holy forgiveness, mercy, charity, faith.
1: प्रभु बिन और न कोए प्रीतम चरण जो लगे दिन की सोए वैसाख सुहावा तान के जन संत पेटे हर सोए वैसाख सुहावा तान के जन संत पेटे हर सोए सिर मस्तक रखिया परमर अष्टकाया रखिया परमेश्वर आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन जन क्या जगदीश्वर सर्व रखिया गुरुदेव